0: हरि भक्ति परायण श्री गुरु धुंडा महाराज देगलूरकर विरचित नारद भक्ति सूत्र विवरण या ग्रंथाचं क्रमशः वाचन। प्रकाशक हरि भक्ति परायण भानुदास महाराज देगलूरकर, धुंडा महाराज मठ, उत्पात गल्ली, पंढरपूर। वाचक ऋषिकेश अयाचित। ही वाचन सेवा हरि भक्ति परायण श्री गुरु चैतन्य महाराज देगलूरकर यांच्या अनुमतीनं आणि कृपाशीर्वादानं सालंकृत आहे।
1: नारदा मुनिवरा।
0: रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ, तुमचं जगणं तुमचा आवाज। प्रभात विश्व सादर करता ऋषिकेश अयाचे।

0: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
0: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: पीजिए सरकार।
1: कहना था कि मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

0: ऐसे मते कंपटीशन सॉन्ग पणतो
1: मुकाबला हमसे ना करो मुकाबला हमसे ना करो हम तुम्हें अपने रंग में रंग डालेंगे एक ही

अरे कोई कलेजे वाला ही ये प्याला भरता है, मैं भर के जाम दुनिया से, हाँ मैं भर के जाम दुनिया से प्यार करने निकला। शराब कहता है मुझको जमाना है बड़ा पगला, शराब कहता है मुझको जमाना है बड़ा पगला।

इंसान क्या है, मेरे सीने में एक आग का दरिया बहता है, हर रोज मेरा दिल शोलों से ही खेला करता है, मैंने तो दिल जला के

0: दीजिए सरकार।
1: कहना था कि मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: या सिनेमात एक कॉम्पिटिशन सॉन्ग पण होतं,
1: मुकाबला हमसे ना करो, मुकाबला हमसे ना करो, हम तुम्हें अपने रंग में रंग डालेंगे एक।

0: मेरी सूरत के तलबगार मगर क्या जाने
1: कि मेरा मारा हुआ दुनिया में ना पानी मांगे।
2: वाह

0: अरे मामा, तू यहाँ अय्याशी कर रहा है और ऊपर से तेरा भांजा आ रहा है।
1: है? भांजा आ रहा है? अब क्या होगा? देवियों, भागो यहाँ से।
2: मगर मामा, भागने के लिए कोई रास्ता भी तो नहीं।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,